2 जून दा अज दा दिन 1984 1 जून नूं गोलीबारी शुरू हो जांदी है। ओही जुल्म दा वरतारा 1 जून दी गोलीबारी विच भाई महंगा सिंह बब्बर ते साथी सिंघां दी शहादत तों बाद 2 जून नूं गुरु नगरी श्री अमृतसर साहिब सवेर तों ही स्थानिक प्रशासन वल्लों करफ्यू लगाता। उस दिन कोई बाहर नहीं सी, सब कमाकारां वाले अपने घरां विच सन, कोई बिजनेस नहीं ओपन सी, कोई दुकानां नहीं ओपन सी, कोई रेहड़ियां बाहर नहीं लगियां सन, चारे पासे चुप दा वरतारा सी। सिर्फ गोलियां दी ताड़ ताड़ ठा ठा पूरे अमृतसर नूं अपने कलावे दे विच लै रही सी। श्रोमणी कमेटी दे प्रधान जथेदार गुरबचन सिंह टौड़ा जी नूं भी अपने दफ्तर जाण तों रोकण दी कोशिश कीती गई, पर एक पासे तत्कालीन प्रधानमंत्री साहब इंदिरा गांधी जी ने रेडियो के उपर दूरदर्शन के राही देशवासियों को एक संदेश भी दिता कि असी गलबात नाल अकालियों के नाल गलबात करके मसला हल कर लवेंगे। सिर्फ दिखावा सी, होया कुछ नहीं। दूजे पासे पहला ही पंजाब दे विच फौज भेज दी गई सी, बहुत सारी फौज पंजाब के वख-वख हिस्सों के विच ऑलरेडी तैनात कर दी सी, एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत। एक कोई अचनचेत होने वाला वरतारा नहीं सी, कुछ वड्डा होण जा रहा सी, कुछ वड्डे होण दे आसार सन। पंजाब दे बुद्धिजीवां नूं भणक पै गई सी, उह भणक किते ना किते राजनीतिक भी सी ते धार्मिक भी सी। पर दूजे पासे इस ऐलान तों पहलां पंजाब नूं फौज दे जदों भी हवाले कीता गया तां फौज दीआं डिवीजनां पिंडां विच वी तैनात कर दित्तियां गईआं। पिंडां दे लोकां नूं वी पिंडां दे विच ही कैद कर दित्ता गया कि पिंडां तों वी लोक निकल ना सकण, तां कि जिहड़ी घटना होण जा रही आ उस नूं वेख के सुण के किते पिंडां दे लोक भड़क ना जाण। इसे करके CRP दे नाल फौज ला के पिंडां दे लोकां नूं वी पिंडां दे विच आस पास दे पिंडां नूं कैद कर दित्ता गया, वड्डे रोड जाम कर दित्ते गए, हर आने जाने उपर निगरानी रखी जान लगी, तलाशियां होन लगियां, पग्गां लैन लगियां। ऐलान कर दिता गया कि सूबे दीआं सरहदां सील कर दित्तियां जाण, सारियां सरहदां, अमृतसर नूं जाण वाले सारे रस्ते बंद कर दित्ते गए। ते 2 जून 1984 तक रेलवे, डाक, दूरसंचार ते आवाजाई समेत सारा सिविल प्रशासन फौज ने अपने कब्जे विच लै लिया सी। इह सी 2 जून की कहानी। कल नूं 3 जून नूं की होया, की वरतारा, किस तरह गोलीबारी होई, किस तरह कल नूं 3 जून ते भी गलबात करांगे। 1984 ना भुलण योग, ना सहण योग ते ना माफ करन योग। 905-673-3337 रेडियो प्रोग्राम उड़ान दे नाल तुसीं जुड़े होए, मैं थोड़ा अपना मेज़बान। ये उन्हां बे गुनाह श्रद्धालुआं नूं समर्पित, बहुत छोटे छोटे बच्चों समर्पित ये 6 दिन का वाका थोड़े नाल सांझा करांगे। तो जुड़ियो, असीस दियो। 905-673-3337 905-673-3337

वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी, ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी, ते सजन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी, मेरे पिंड नू जांदे रावां वर्गी, आओ इसदी शान वधाइए, एदे सोले रल मिल गाइए, क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहिदा है, बंदा जदों बोले तां पछाण होना चाहिदा है, अपनी पछाण वाला दीवा ना बजा

0: 7998877 थैंक यू जी।
1: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
2: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
1: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
2: 6475594 647 835 5294
3: नाले चोपड़िया नाले दो दो
4: आहो जी मेनू भी पता नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना यानी दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी दाला मसाले पिकल्स चौल चाह पत्ती फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
3: डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रेश चिकन बीफ गोट मीट सब कुछ मिलूगा इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे चना भटूरा वेज थाली वेज बिरयानी बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो
4: एक बार आओगे बार बार

कमाल है। क्या बात है, सेवा सब दी करो पर उम्मीद किसे तो ना रखो, क्योंकि सेवा दा सही मुल है जिहड़ा रब ही दे सकदा इंसान नहीं। डूंगियां गल्लां समझण लई डूंगा होना पैंदा है, ते डूंगे होण लई डूंगियां सट्टां खाणियां पैंदियां ने। इसे नूं कहिंदे जिंदगी कहिंदे ने। जिहड़े सबर संतोख दे नाल रहिंदे हन उहनां कोल हर चीज किसे ना किसे तरीके आप ही पुज जांदी है। सबर रख के उस दी कला वरतदी देखो, भावें देर नाल ही एहसास होवे पर तुसी देखोगे कि उस परमात्मा दे फैसले बहुत ही सोहने हुंदे ने। परमात्मा दा उना दाता लई शुकराना करिया करो जिहड़िया उसने तुहानू बिना मंगिया ही बख्शिया हन। रब नाल जुड़न वाला रस्ता शुरू विच सब लई ही औखा हुंदा, हाँ अगे जा के इह रस्ता सुकून दिंदा जो दुनिया दी कोई चीज नहीं दे सकदा। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्नवाद।

0: पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: टैक्स का सीजन आ चुका है, पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे हुई हैं, केड़े-केड़े लिमिट्स तुहाडे लई सरकार ने सेट किए हैं, लोन मिल सकते हैं या कितने भी थोड़ी कंपनी की शेप किस तरह होनी चाहिए है। पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साचा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दी दो लोकेशंस तो नवीं फाइल्स इत्थे लै रहे ने, उत्थे तुहानू सुचेत करदे हन आने वाले समय लई। टैक्स दी सर्विसेज लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन।
2: ਭੈਣ ਜੀ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ, ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ।
1: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਊਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੋਵੇਡਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699 tawakitchen.ca।
4: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
5: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा ता हो ही नहीं।
6: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
7: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
8: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकदे हो 416-518-3200।

0: गुड मिड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरों नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखी निजर किरण जी तुहाडे लई वतनों दूर पेश करनगे और नाल दी नाल मनप्रीत जी इंडिया तों खबरां पेश करनगे। तियां दे मेले दी जानकारी दित्ती जाएगी। अज सूरज सिंह 5:38 ते आया, 8:53 ते चले जाना। मामा चांसो अज अद्धी रातों 11:56 ते आएगा, सवेरे 8 बजे चले जाना। अज दा तापमान 29 डिग्री तक जाएगा, सारा दिन सूरज चमकेगा। कल नू 28 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, फ्राइडे नू 30 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड और सैटरडे नू 21 डिग्री बदलवाई नाल छतरी छातारी लोड पेगी, बारिश पैंदी रहेगी। और संडे नू तापमान 20 डिग्री होगा मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड। मंडे नू भी 22-23 डिग्री तक तापमान जाणगे। भाई साहब क्या हाल चाल ने, उड़दे आ तोते? खैर कल किरण उन्होंने प्रोग्राम पेश किया, उन्होंने धन्यवाद कर दिया। थोड़ा जहा बिजी सी, बिजी की सी अपने जितेंद्र गंधम नाल जिहड़ी उन्होंने कॉटेज सेल ते लाई आ उह देखण गए सी। क्या बात है भैया, बह जा चकलो चकलो वाली कॉटेज है। मलेशिया दे विच उन्होंने 16 साल तो थले दे बच्चे आ उन्हां ते सोशल मीडिया दे अकाउंट ते पाबंदी ला दित्ती है। ऑस्ट्रेलिया ने भी लाई आते अपने इत्थे लाउण दी लोड़ है। इत्थे तां उन्हां ते भी सोशल मीडिया ते पाबंदी लाउण दी लोड़ है, जिहड़े बकवास करदे ने टिकटॉक ते आके होर किते आके उन्हां दे भी मुंह बंद कर देने चाहीदे आ। खैर स्टैनली कप शुरू हो चुका है, रात होया जी। पहला जिहड़ा मैच है वह गोल्डन नाइट्स अपने लॉस वेगस वाले जिते, हरिकन ने 4 रन बनाए, उन्हां दे 5 रन गोल सी। सो 5-4 नाल गोल्डन नाइट्स वाले कल जित गए ने। बड़ा बहादरी नाल खेडदे हुए 4-3 दे फर्क नाल अटलांटा तों हार गए। अज एक जन्मदिन मनाया जा रहा है जी, वेरी फेमस परसन एंडरसन कूपर, जिहड़ा कि CNN दा वन ऑफ द होस्ट है। 1967 दे विच अज दी तरीक पैदा होया सी। ऑलराइट, रणजीत सिंह जिहड़ा हिंदुस्तानी है, 32 साल का है, ड्रग समगलिंग करदा बार्डर ते फड़ लिया। ते फिर कहंदे जी इह मुल्क पहला वर्गा नहीं रहा, इन खराब कौन कर रहा है जी। इंडियन फ्रूटलैंड बड़ी जबरदस्त सेल लगी है, उहदा वेरवा दिंदे आ, स्टे ट्यून।
1: पूरे 40 साल हो गए ने अपने व्याह नूं, फिर कित्थे सेलिब्रेट करन दा इरादा है?
2: मेरी मन्नो आपां पिंड ना चलिए।
1: धर्म नाल आ तां तूं मेरे मन दी गल ही कहती है, पर इन्नी छेती टिकटां कित्थों मिलणगियां?
2: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वर्गा ही साथ है उन्हां दा, अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 सालां तो।
1: 40 सालां तो बेदाग सर्विस
3: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल,
2: क्वालिटी सर्विस, वधिया रेट्स ते बेस्ट डीलिंग है उन्हां दी पछाण। इंडिया पाकिस्तान या दुनिया दे किसी भी कोने च करना होए ट्रैवल,
3: सर्विंग कैनेडा नेशन वाइड,
2: 9056718400 or 9057968800 or visit giltravels.ca.
0: I am Dave Tatla and you are not.
4: देखो जी, एक ते मच्छी हुंदी है जिहड़ी पानी च रहिंदी है, ते दूसरी मच्छी हुंदी है जिहनूं वेख के मुंह च पानी आ जांदा है। इंडियन स्वीट मास्टर तो मिलदी है, आज ही चख लो।
2: कॉर्नर ऑफ मैकलॉगलन एंड रे लॉसन, कॉल 9054502800 नाउ ओपन टिल 2 AM।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे पीओ चंट पढ़ दा। विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
0: भैया ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905-874-98-78।
2: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो
4: 416-456-6161। IPL चल रहा है, only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream, www.karostream.com or call 905-204-1313.

0: चक्कर लगाओ।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: काल डक क्लीनिंग वाले पिछले 40 वर्षों तो साडी कमेंट दी सेवा कर रहे ने। साडी कमेंट दी सब तो पहली कंपनी है डक क्लीनिंग दी। आजकल उन्होंने स्पेशल लगाए ने, खास करके ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इथोबिको लोकल एरिया दे विच। किसे साइज दा भी घर होवे, अप टू 3000 स्क्वायर फीट दे डक क्लीन कराओ। जी हां, ओनली $140। वैसे तो रेगुलर प्राइस $250 विच करदे ने, लेकिन हुण उन्होंने स्पेशल लगाया डक क्लीनिंग, सिर्फ ते सिर्फ $140 देवो ते अपने डक्ट क्लीन कराओ। बड़ी ही बढ़िया ढंग नाल डक्ट क्लीन करनगे, सैनिटाइजर करके जानगे। नाल दी नाल ए हर तरह दी रिपेयर करदे ने, इंस्टॉल करदे ने एयर कंडीशन ते फर्नेस। www.akalduct.com आज ही इन्हां नूं बुकिंग वास्ते कॉल कर लो 416-710-0662 416-710-0662।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 456-6161
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: ते डरावरी सूट कर दिया जट्टा नु
6: अज खणे खणे दे वासी गल नहीं है